हार के वो जा रहा है कोई शब्द पुकार। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूप गए दिन।

बड़े कमबख्त हो आप, नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा के

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS साउथ एशियन।

नेचुरल

कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: आ गले लग जाओ मेरे यार, तुम्हारा ही इंतजार है, दिल को बेहद तुमसे प्यार है।

0: the hit. This is SBS South Asian.
1: Pushpa.

पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: आपका सुरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।
1: An hour of the best in Punjabi music starts now. This is Bhangra Hits on SBS South Asian.

Tiger Style. SBS South Asian.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर।
2: शनिवार 16 मई 2026 का दिन। आप सभी का स्वागत है SBS के हिंदी कार्यक्रम में और आपको अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टोरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज सप्ताहांत का दिन, तो आज हम बात करेंगे सोशल डिटॉक्स की। और परिवार में क्या सबकी भूमिका एक ही ढर्रे पर होती है या उसमें होता है कुछ अलग भी? परिवार की बात इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये नेशनल फैमिली वीक है ऑस्ट्रेलिया का। तो इन सब बातों पर चर्चा तो होगी, आपकी पसंद के गाने भी होंगे, कुछ मिले जुले गाने रहेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शनिवार 16 मई के लिए यह है न्यूज़ फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी का कहना है कि यह आवश्यक है कि ऑस्ट्रेलिया में हेट ग्रुप्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून ग्रुप के सुधार की किसी भी कोशिश में असरदार हों। घरेलू मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कल शुक्रवार 15 मई को कहा कि नियो नाजी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट नेटवर्क को एक बैन हेट ग्रुप के तौर पर लिस्ट किया गया है और खुद को वाइट ऑस्ट्रेलिया कहने वाले ग्रुप के तौर पर रीब्रांड करके हेट स्पीच कानूनों से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक लिस्टिंग आज यानी 16 मई आधी रात से लागू हो गई है, जिससे ग्रुप को सपोर्ट करना, फंडिंग करना, ट्रेनिंग देना, भर्ती करना, ज्वाइन करना या डायरेक्ट करना जुर्म माना जाएगा और इस अपराध के लिए 15 वर्ष की जेल हो सकती है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा है कि वो और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। ये टोक्यो में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच हुआ है, जिसमें चीन, ईरान से जुड़े तनाव और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर असर शामिल है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस्ट आइलैंड के पास शार्क के हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस का कहना है कि 38 वर्ष के व्यक्ति को नाव से किनारे ले जाया गया, जहां पैरामेडिक्स ने उनका इलाज किया लेकिन उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हॉलीवुड के पूर्व फिल्म डायरेक्टर हार्वी वाइनस्टीन के एक वकील का कहना है कि न्यूयॉर्क की जूरी बलात्कार के दोबारा ट्रायल में फैसला नहीं कर पाई, इसलिए वो प्रोसिक्यूटर से कहेंगे कि वो उनके क्लाइंट का पीछा ना करें। ये केस 3 बार ट्रायल में गया है, जिसमें जूरी के फैसले पर कोई नतीजा ना निकलने पर जज ने इसे गलत करार दिया। ऐसा समझा जाता है कि 9 जूरी सदस्य वाइनस्टीन को बरी करना चाहते थे, जबकि 3 का मानना था कि वो हेयर स्टाइलिस्ट एक्टर जेसिका मान के साथ बलात्कार के दोषी हैं। वाइनस्टीन के वकीलों का कहना था कि 2013 में हुई ये बात आपसी सहमति की थी। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर अब ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से मंदिर माना जाएगा। कल शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में स्थापित 10 सिद्धांतों के आधार पर पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, ASI की अधिसूचनाओं और सर्वे रिपोर्ट का मूल्यांकन पर आधारित है। जस्टिस विजय शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुरातात्विक व्याख्या कोई अनुमान का विषय नहीं है, बल्कि ये एक बहुविषयी वैज्ञानिक प्रक्रिया है और कोर्ट ऐसे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर भरोसा कर सकती है। इंदौर खंडपीठ ने भूषशाला को वाग देवी मंदिर माना है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और दोस्तों, न्यूज़ फ्लैश के बाद अब बात सोशल डिटॉक्स की। क्या है ये सोशल डिटॉक्स, उसके बारे में अभी जानते ही हैं। ये है कि एम्स्टर्डम में ऑफलाइन क्लब, उसमें ऐसी इवेंट्स हैं जो युवाओं की पसंद बनती जा रही हैं, यानी डिजिटल दुनिया से दूरी। क्या है ये ट्रेंड, क्या असर डाल रहा है ये जीवन पर, आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
3: एम्स्टर्डम में एक नए तरह का क्लब शुरू हुआ है जहां लोग खुद से तय करते हैं कि वो ऑफलाइन रहेंगे, यानी अपने फोन और दूसरे डिवाइसेस से दूर। ये गैदरिंग एक बड़े ट्रेंड को दिखाती है, खासकर युवाओं में, जहां वो स्क्रीन से दूर जाकर दूसरों से और खुद से जुड़ना चाहते हैं। SBS हिंदी के लिए मैं हूँ नबील हसन। लगभग 200 लोग एम्स्टर्डम के सजे दजे 17वीं सदी के पोस्ट हॉर्न किर्क बेसिलिसा में इकट्ठा हैं। ये एक ऐतिहासिक चर्च हो सकता है, लेकिन तीन लंबी टेबल्स के आसपास बैठे ये लोग, जहां एक युवा महिला एक बड़ा सा पियानो बजा रही है, यहां किसी धार्मिक सर्विस के लिए नहीं आए हैं। वो शांतिपूर्वक तरीके से पूरी तरह फोकस्ड हैं, कागज, पेंस, पेंट्स, कलर्ड पेंसिल्स और सीजर्स के साथ। कमरे में एक भी व्यक्ति अपने फोन की ओर नहीं देख रहा है। उन्होंने 2 घंटे के इस क्रिएटिव सेशन में जाने से पहले अपने फोन्स दरवाजे पर ही जमा कर दिए थे। ये ऑफलाइन क्लब का लेटेस्ट इवेंट है, जिसकी शुरुआत 2024 में एम्स्टर्डम में 3 छात्रों द्वारा एक छोटे पहल के रूप में हुई थी। इलिया नेपुलहाउट इसके को फाउंडर्स में से एक हैं।
4: We create our events and gatherings with different themes. One of them is connecting with yourself through creative activities or reading or writing or puzzling. So really something that makes you slow down and reflect, go inwards. And then also more connection-focused events where you talk to others, you play board games, you go on offline walks in nature, for example, and meet people in a dynamic and natural way.
3: शुरुआत में ये क्लब एक कैफे में कैजुअल मीटअप के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पूरे यूरोप में ऑफलाइन इवेंट्स का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क बन चुका है। अब 18 सिटीज में सेशन आयोजित होते हैं और क्लब ने इंस्टाग्राम पर लगभग 6 लाख फॉलोअर्स की एक बड़ी कम्युनिटी बना ली है। एम्स्टर्डम में ये सेशन एक लाइव पियानो परफॉर्मेंस के साथ शुरू होता है, जिसके बाद पार्टिसिपेंट्स अलग अलग ऑफलाइन एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, जैसे क्राफ्टिंग और राइटिंग एक्सरसाइजेज। इनमें अपने भविष्य के 80वें जन्मदिन के लिए स्पीच तैयार करना भी शामिल है। बर्नार्ड कापुलो, एक 27 वर्षीय यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर, इस सेशन के रेगुलर अटेंडी बन चुके हैं।
5: आई थिंक यू नो इट्स नाइस टू लाइक टच दैट पेन एंड पेपर, यू नो, लाइक दैट फिजिकल एलिमेंट जस्ट ग्राउंड्स यू, आई थिंक, एंड फॉर श्योर लाइक लुकिंग बैक, आई मीन एज अ चाइल्ड आई वुड ऑलवेज बी ड्रॉइंग एंड थिंग्स लाइक दैट. So definitely also it's a bit of an inner child, you know, who doesn't want to be behind the screen and be online all the time.
3: एम्स्टर्डम के इस सेशन के टिकट्स की कीमत लगभग $49 है और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए क्लब एम्स्टर्डम में अप्रैल में 8 और इवेंट्स की तैयारी कर रहा है। कुछ इवेंट्स इंडिविजुअल एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग या पजल्स, जबकि कुछ ज्यादा सोशल होते हैं, जिनमें बोर्ड गेम्स या ग्रुप वॉक्स शामिल होते हैं। 29 वर्षीय मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पेनी स्टीनबी के लिए यही सोशल एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है।
6: What I just really love is that you can kind of unwind but also with other people. So when you're at home it's just by yourself and you're like, okay, I cannot use my phone right now or I should just chill. And then it's a bit harder than when you're actually go somewhere, someplace like here, and then you're surrounded with all these people who are kind of in the same vibe, and then it's just a special feeling.
3: 41-year-old consultant Nicola Cloherty कहती हैं कि offline club sessions में शामिल होना उन्हें उस समय की याद दिलाता है जब जीवन में हर वक्त digital access नहीं था.
7: Being like nearly 42 and having had both sides of technology and device life, then not, this just returns me to a simpler way of being and the joys that I experienced as a kid.
3: ये ट्रेंड ऑनलाइन भी दिखाई देता है जहाँ कई सोशल मीडिया यूजर्स आने वाले वर्षों में अपने यूसेज को कम करने या पूरी तरह बंद करने की योजना साझा कर रहे हैं. लेकिन यूट्रेस्ट यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर सूरा गायत कहते हैं कि ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनसे बनी हुई आदतों को तोड़ना मुश्किल होता है.
8: Those apps are developed to have you sort of stay as long as possible, right? By having short-term rewards, right? So I move to the next image and, oh, that's nice. And then you have a 10-second reward rush. And then, oh, but what's the next image? And then it really works by sort of having you cling on to this app, sort of by short-term rewards. Or by giving you the feeling that you're missing out when you're not on the app.
3: Brian Hermelin, एक 31-year-old artist, कहते हैं कि offline club ने उन्हें जीवन की गति में एक refreshing बदलाव दिया है.
9: It's important to disconnect. For me personally, I find myself like being quite often on the internet, also scrolling. So these kind of like activities is allowing me to like really understand okay what it means to be present and also like slow down the mind because it's always going. Like, it continues to go and you don't have time for yourself.
3: SBS News पर एंजेलिका वेट और एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने.
2: तो आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे सोशल डिटॉक्स के ऊपर. आगे हम बात करेंगे कुछ भूमिकाओं के ऊपर जो परंपरागत भूमिकाएं होती हैं. कुछ गाने भी सुनेंगे. वैसे यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सोचिए, कल्पना करिए कि रात को आप घर में अकेले हैं, किसी बात पर निराश हैं, दूर दूर तक सन्नाटा है. ऐसे में हो सकता है कि निराशा के घेरे से बाहर आने के लिए आप कोई गाना गुनगुनाएं जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए या जीवन की मुश्किलों से लड़ने का हौसला आ जाए. ये भी हो सकता है कि आप ऑफिस की किसी बात पर परेशान हैं, घर जा रहे हैं. हो सकता है ऐसी परिस्थिति में कोई गाना आपके दिमाग में आ जाए और आपका मूड ही बदल दे और आप फिर से खुश हो जाएं. या ये भी हो सकता है कि किसी वजह से आप बहुत ही दुखी हैं और ऐसे में कोई दुख भरा गाना आपकी कार में बज पड़े. तो कभी कभी ऐसे होता है कि उसके साथ आपकी हिम्मत बन जाती है. यानी संगीत तो हम सब लोगों का एक अहम हिस्सा होता है. आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह की कोई स्थिति आती है, आप घर में अकेले हैं, रात का समय है, किसी भी बात से आपके मन में कौन सा गाना आता है, लिख भेजिएगा मुझे. क्या है वो जो आपको उस माहौल से, जिस जो माहौल आपके लिए एक परेशानी का सबब बन रहा हो या कुछ भी हो, उससे बाहर आप आने के लिए कोई क्या गाना आपके दिमाग में गूंजने लगता है, बताइएगा. आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद. उम्मीद कर रही हूँ कि आप जल्दी से गाना सोच के मुझे लिख भेजेंगे.
10: Hey America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
11: Starting a new life in Australia isn't easy.
12: A lot of companies have rejected me.
13: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
11: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News. And I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
14: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। इस अंतराल पर जाने से पहले क्योंकि हम एक रिपोर्ट सुन रहे थे डिटॉक्स, जिसमें बात थी कि डिजिटल दुनिया से दूर हटकर किसी और तरह से अपने मन में या उसकी मनोरंजन का साधन चुना जाए, और उसी पर मैंने आपसे एक सवाल ये भी पूछ लिया था कि कल्पना करें कि आप घर में अकेले हैं, किसी बात पर निराश हैं, दूर दूर तक सन्नाटा है। ज़रूरी नहीं है सन्नाटा हो, बाहर शोर भी मच सकता है, लेकिन आप अपने मन में कहीं अकेले हैं, तो क्या आपको कोई गाना याद आ जाता है इसकी जगह कि आप फ़ोन की तरफ भागें या टीवी ऑन करें? तो हमारे श्रोता अमित चड्ढा जी ने लिखा है कि उन्हें एक गाना याद आता है, वो सिकंदर ही कहलाता है। बस जैसे ही ये गाना याद आता होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने जिस भी भावनाओं में हैं उससे बाहर निकल आते होंगे और दोबारा से अपनी बैटरी रिचार्ज कर लेते होंगे। और हमारे श्रोता आलोक जी याद करते हैं, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, तो उससे उनको एक नई राह मिल जाती होगी। आपको अचानक से कौन सा गाना याद आता है अवश्य मेरे साथ साझा कीजिए। और अब हम बात करते हैं कि अक्सर घर और बाहर की भूमिका तयशुदा मानी जाती है, यानी घर में महिलाएं काम करेंगी, बाहर का काम पुरुष देख लेंगे, और ये एक लंबे समय तक चलता ही आ रहा है, और शायद इसी वजह से शब्द बना होगा हाउसवाइफ। लेकिन क्या यही मापदंड है, या आपको लगता है कि हाउस हस्बैंड शब्द भी चर निकलेगा? अब ये तो आता हुआ समय ही तय करेगा कि ये शब्द कितना प्रचलित होता है, लेकिन बिहार में हाउस हस्बैंड इसकी तरफ कदम तो बढ़ चला है। कैसे जानते हैं इस रिपोर्ट में जो आपके लिए हमें भेजी है फैसल फरीद ने। इस रिपोर्ट को हो सकता है आपने पहले भी सुना हो या इसकी आपको पहले से जानकारी हो, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स को या ऐसी बातों को दोबारा सुन लेना फ़ायदेमंद ही रहता है, क्योंकि हमारी विचारधाराओं पर कुछ असर तो सब चीज़ें डालती ही हैं। तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
15: आज के परंपरागत समाज में जहां आज भी घर और बाहर की भूमिकाएं अक्सर तयशुदा मानी जाती हैं, जैसे घर के काम महिलाएं करेंगी, बाहर का कार्य पुरुष,

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: अपेक्षा की जाती है। अनिल दुबे हाउस हस्बैंड बन गए। हाउस हस्बैंड बनने के बाद अनिल दुबे ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण के साथ निभाया। वे घर के दैनिक कार्यों जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई, बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना जैसे काम करते हैं। इसके साथ ही वे परिवार के बजट और खर्चों का भी प्रबंधन करते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहता है। धीरे धीरे उन्होंने इन कार्यों में दक्षता हासिल कर ली और आज वे अपने परिवार के सुचारू संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैसे ये शुरुआत हुई, अनिल दुबे बताते हैं।
6: नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चीज को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और रिकॉग्नाइज किया है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जी, और आपने भी इस चीज को आगे लाने के लिए आपने मुझे अप्रोच किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, मोतिहारी में मेहसी मेरा गाँव है, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। और हमारी शादी हुई दिसंबर 2015 में सर, उसके पहले मैंने डिप्लोमा से मैकेनिकल किया था सॉरी, और उसके बाद मैं जॉब बद्दी में जॉब कर रहा था, हिमाचल प्रदेश में है बद्दी, वहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल मंत्री में एज ए जूनियर इंजीनियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद जब मैं मुजफ्फरपुर आया, मेरी तस्वीर एक गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क में काम कर रही थी और मुजफ्फरपुर ने इनका पोस्ट था। शादी होने के बाद कुछ जो सिचुएशन होते हैं फैमिली के कि अब यहाँ से आगे कैसे चलना है, एक नई जिम्मेदारी आ गई थी कि इसके बाद आगे कैसे खुद को और फैमिली को लेकर चलना है। तो उस समय कुछ जो हमारी वाइफ के जो हेल्थ इशू थे उस समय नहीं थे, जो पहले थे शादी के उसके इफेक्ट अभी भी थे, और उनको सपोर्ट की जरूरत थी मेंटली। और जब वो मतलब काम करके आती थी उसके बाद जो घर के काम है ये सब चीज़ें उनको करना पड़ता था, और वो उस समय तक अपने मायके में ही रहती थी शादी के बाद, 10 हमारे शादी हुई थी। तो 2-3 महीने मुझे लगे, दिसंबर से मार्च तक मुझे लगे इस चीज को डिसीजन लेने में कि मुझे क्या करना है। मैंने सिचुएशन देखे, हर एक सिचुएशन देखा, मैंने उनका भी देखा, अपना भी देखा, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया ठीक है मैं घर संभालता हूँ और तुम आगे की तरफ अपना बढ़ो। तो वहां से शुरुआत हुई हाउस हस्बैंड मतलब बनने की। और उस बीच में जब तक मैं मुजफ्फरपुर में था तब मैं छोटे मोटे काम हमने किया कुछ दिनों तक, और उसके बाद 2018 में हमारा ट्रांसफर हो गया मेरी पत्नी का कोलकाता, उनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने के बाद ट्रांसफर कोलकाता हुआ, हम लोग कोलकाता आ गए और 7 साल कोलकाता हम लोग रहे हैं वहाँ पे 2018 से 2025 तक, और अभी फिलहाल हम लोग 2025 से 2026 तक अभी तक हम लोग भुवनेश्वर में है, कोलकाता में इनका भी लास्ट ईयर प्रमोशन हुआ, प्रमोशन जो है फिर से इनका ट्रांसफर हुआ। सो बेसिकली हमको जो स्टार्टिंग में लगा, हमने हमारी बात हुई इनसे, जो भी सारी बातें हुई तो इनको कुछ आगे करने का मन था और आगे करने के लिए सपोर्ट का जरूरत चाहिए होता है। जब हम एक देखते हैं कि लड़की का शादी होता है तो उसमें उनको घर और मतलब अपना करियर, अगर वर्किंग वूमेन है तो उनको अपना करियर भी देखना है और फैमिली को भी देखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इनको इमोशनली भी उनको सपोर्ट का जरूरत था, क्योंकि ऑलरेडी अपने घर का सब कुछ पहले से देसी आ रही थी, घर की मरीज बेटी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो मैं उसी को बता नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं सकता हूँ फिलहाल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि इसी से मैं घर संभालता हूँ, तुम आगे की तरफ बढ़ो।
5: अनिल दुबे का यह कदम समाज के लिए एक संदेश भी है कि घर संभालना केवल महिलाओं का कार्य नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निभाई जा सकती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सम्मान और जिम्मेदारी का कोई लिंग नहीं होता, जो काम प्रेम, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ किया जाए वही सबसे बड़ा योगदान होता है। शायद हम लोग भी इस बात के अभ्यस्त नहीं होंगे कि किसी ने घर संभालने की जिम्मेदारी उठाई। घर के सारे काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्ची को देखना, बाहर से सामान लाना इत्यादि, ये भी एक फुल टाइम काम जैसा है। कैसी रहती है अनिल जी की दिनचर्या, दिन कैसा रहता है, वे बताते हैं।
6: अच्छा, अभी जब तक हमारी बेटी नहीं हुई थी तब तक का दिनचर्या मैं बताऊं आपको पहले से, तो सुबह से जैसे जो काम

0: टाइम बाय टाइम करता था, घर का सारा काम होता था, फिर आम आने के बाद खाना बनता था। हमारी बेटी हुई जून 2020 में, तो उस समय से अभी तक सुबह खाना बनाना होता है और वाइफ हमारी सुबह में बेटी को तैयार करके जाती है तो स्कूल ले जाना होता है, वापस आने के बाद उधर से उसको स्कूल लाना है, बेटी का देखभाल करना है, घर के जो काम है कपड़े धोना है, कपड़े सुखाना है, और इसके बाद फिर शाम में बच्चे का नाश्ता, फिर रात का खाना, और इसी बीच में कुछ सामान लाने जाना है तो वो मेरा ही काम रहता है, मैं ही जाता हूँ, बेटी तो कहीं लेके जाना है नहीं, मैं तो वहीं लेकर के जाता हूँ। तो मेरा पूरा दिन सुबह से लेके रात तक का मतलब कंप्लीट वो मतलब तय के वैसा है, सुबह जगना है और जगने से लेकर रात सोने तक का काम मेरा मतलब ऑलरेडी से आ गया है।
1: भले अनिल का कार्य और उनकी पहल सराहनीय है, लेकिन आज भी समाज से इनको सकारात्मक संदेश नहीं मिला। ये बताते हैं कि अभी भी हास परिहास या व्यंगात्मक लहजे से लोग बात करते हैं, जबकि हमको ये सोचना चाहिए कि अनिल दुबे की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है जो पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर अपने परिवार और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत एक छोटे निर्णय से होती है, और यदि वह निर्णय सही सोच और साहस के साथ लिया जाए तो वह समाज में नई दिशा भी दे सकता है।
0: पहले तो मैं बताऊँ, नीक सेहत का मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, क्योंकि जब ये डिसीजन मैंने लिया था तो उस समय मुझे एक चीज का समझ मतलब मैं कह करता हूँ खुद से कि था कि ये काम है, ये घर का काम है, क्योंकि घर में भी हम देखते थे महामारी काम करती थी, और मैं मुझे थोड़ा सा डिसीजन लेने में आसानी इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं घर में अपनी माँ का भी कभी कभी यहाँ से पटाता था, तो ये हिम्मत मेरे अंदर में नहीं था, ये हमें समझदारी थी कि हाँ ये एक काम है इसको करना है और ये जिम्मेदारी का काम है ये करना है इसको। पत्नी सा रिएक्शन मेरा कुछ नहीं रहा कभी से भी उनका कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने भी इस चीज को समझा, हम मैंने भी इस चीज को समझा कि हमें जरूरत किस चीज की थी, और अभी अभी तक भी उनका मेरी वाइफ का कहीं से कोई ये चीज नहीं हुआ, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन भी शुरू किया तभी उनकी कोई परेशानी नहीं हुई इस बात से ना अभी है ठीक है। समाज का प्रतिक्रिया शुरू से और अभी तक कुछ बदला नहीं है, जैसे जिस नजर से देखा जाता है कि जब मर्द घर में काम करता हो, सिचेन में काम करता हो, घर संभालता हो, अगर पत्नी वाइफ अगर वकील में है, तो वो जो समाज का नजरिया है वो बदला नहीं है मेरे प्रति, और थोड़ा सा ये मुश्किल होता है मतलब मेंटली इस चीज को हैंडल करना, सोसाइटी का जो थिंकिंग होता है जब एक मर्द घर संभालता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कंप्लीटली डिफरेंस हो जाता है, और मैं बोलूं कि अभी तक भी ऐसा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मुझसे लोग बातें करते हैं तो हंसते हैं एकदम क्लियरली हंसते हैं, और मैं अगर आप देखेंगे हमारे जो कॉन्टेंट है मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ कि हाँ लोग कैसे बोलते हैं, तो ये एक तरह का मतलब अननेसेसरी मेंटल प्रेशर होता है जो क्रिएट करना लोग चाहते हैं जब भी आप कुछ ऐसा करने का कोशिश करेंगे तो।
1: जी, यह तो स्पष्ट होता है कि घर संभालना केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुष भी उतनी जिम्मेदारी और कुशलता से घरेलू कार्य कर सकते हैं। रूढ़ियों को तोड़ने का साहस, अनिल दुबे का यह निर्णय यह दर्शाता है कि समाज की पारंपरिक सोच से हटकर भी सही निर्णय लिया जा सकता है यदि वह परिवार के हित में हो। लखनऊ से फैसल फरीद।
2: तो देखिए, ये सोच की बात होती है और सोच के ऊपर बात आती है कि उसी सोच में संगीत बहुत बड़ा अपना योगदान करता है हमारी इसी सोच में, क्योंकि कई बार होता है ना, निराश हैं या खुश हैं या डर लग रहा है, ऐसे में आप क्या गुनगुनाते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही थी। तो फिल्म भाई भाई का गाना है, गीता दत्त का गाया हुआ, ऐ दिल मुझे बता दे, ये खुशी लेकर आता है हमारे श्रोता कुमार जी के लिए। और हमारे श्रोता हरपाल जी कहते हैं, दो गाने हैं, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए और जिस पथ पे चला, इनसे उनके मन में अगर कोई निराशा है तो वो दूर हो जाती है। और भीमा भाई जी अक्सर गुनगुनाते हैं फिल्म सिलसिला का गाना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, यानी गाने गाइए, गुनगुनाइए या उनका ध्यान रखिए और बस परेशानी देखिए, कोई भी निराशा कैसे छूमंतर हो जाती है। आप कहीं ना जाइएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसके बारे में अपने और मुझे गानों की लिस्ट भेजते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार. बॉलीवुड के समाचार अभी आगे हम सुनेंगे, क्यों ना उससे पहले ये गाना सुनते चलें. कल इस गाने को सुनवाया था लेकिन वो छोटा सुनवा दिया था. फरमाइश थी कि इस गाने को पूरा सुनवाइए या थोड़ा और सुनवाइए, तो चलिए सुनते हैं यही गाना.

0: जी, साथ साथ रहें तो खुशियाँ यूं ही आपका दामन भर देती हैं और आपके चेहरे पर आ जाती है मुस्कुराहट, और उसमें कई गाने आपको याद आते हैं चाहे आप कितना भी निराश क्यों ना हो। और हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी कह रहे हैं कि इस प्रश्न को सुनते ही उनके दिमाग में जो पहला गाना आया वो था एक चतुर नार करके सिंगार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ ही गई होगी। अब चूंकि हम गानों की बात कर रहे हैं तो आइए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया की तरफ और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है।
1: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूँ नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में आयोजित गोल्ड गाला 2026 में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज की। इस खास इवेंट में उनका ग्लैमरस और यूनिक लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह रही कि प्रियंका ने इस मौके पर 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से बनी खास ड्रेस पहनी, जिसने उनके लुक को और भी खास बना दिया। गोल्ड गाला 2026 के लिए प्रियंका चोपड़ा ने मशहूर डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन किया गया मॉडर्न गाउन पहना था। इस ड्रेस को 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से तैयार किया गया था। गोल्ड गाला 2026 में प्रियंका चोपड़ा को सिनेमा और ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके 25 साल पूरे होने के लिए ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जल्दी पिता और बच्चे के प्यार पर बनी एक और फिल्म दर्शकों के बीच दस्तक देने जा रही है। ये फिल्म फादर्स डे के मौके पर ही रिलीज होगी, यानी इस फादर्स डे पर आप पिता और बच्चे के प्यार को दिखाते एक नई फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। ये फिल्म है समर्पित फादर्स लव, जिसका फर्स्ट पोस्टर भी आउट हो चुका है और पोस्टर जारी होते ही ये फिल्म चर्चा में आ गई है। ये फिल्म पिता और बेटे के अटूट और गहरे संबंधों की एक ऐसी कहानी है जो दिलों को छू लेती है। ये फिल्म इसी फादर्स डे से पहले यानी 19 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 15 से 21 जून तक मुंबई में किया जाएगा। अब कार्यक्रम के लिए प्रतिनिधियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की घोषणा कर दी गई है। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने मुंबई फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, मीडिया प्रोफेशनल्स और सिनेमा लवर्स को एक साथ लाता रहता है। दर्शन रावल ने आज अपना नया गाना ओनली माइंड रिलीज किया, जो गहरे और सच्चे प्यार की भावना को दर्शाता है। अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास नोट शेयर करते हुए गदर 3 को लेकर कंफर्म किया कि फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म जरूर बनी। अमीषा पटेल ने एक्स पर लिखा, गदर 3 जरूर आएगी और जब आएगी थिएटर में हंगामा मच जाएगा। नोरा फतेही फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनेंगी। ये सेरेमनी 12 जून को कनाडा के टोरंटो में BMO फील्ड में होगी। इससे पहले नूरा ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की क्लोजिंग सेरेमनी और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया था। अब वे पहली और एकमात्र बॉलीवुड कलाकार बनेंगी जिन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट के वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया है। वर्ल्ड कप 2026 तीन देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित हो रहा है। कनाडा की सेरेमनी में बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी DJ संजॉय भी परफॉर्म करेंगे। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के बाद अब अभिनेत्री दिशा पाटनी भी ग्लोबल मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली इंटरनेशनल मूवी द पोर्टल ऑफ फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में वो एक्शन करती नजर आ रही हैं। फिल्म द पोर्टल ऑफ फोर्स एक बड़ी काल्पनिक और रहस्यमय दुनिया में ले जाती है। ये स्टेटी गार्ड्स वर्सेज होली गार्ड्स नाम की नई फिल्म सीरीज की पहली मूवी है। कुछ गाने बस दिल पे सीधे क्लिक हो जाते हैं, और तेरा हो जाऊं है जवानी तो इश्क होना है शायद इस गर्मी का अल्टीमेट लव एंथम बनने वाला है। स्टेबिन बेन, जो पहले से ही रोमांटिक हिट्स के किंग बन चुके हैं, इस बार जोनिता गांधी के साथ जोड़ी बना रहे हैं। वायु के लिरिक्स सिंपल हैं, फ्लाई हैं और सीधा दिल तक जाते हैं। फिल्म 5 जून को सिनेमा में आ रही है। एक्सप्रेस सयानी गुप्ता को कहानी कहने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। इस सम्मान उन लोगों को पहचान देता है जिनके काम ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई हो। इस सम्मान के जरिए एसोसिएशन ने स्क्रीन पर सच्ची और सबको साथ लेकर चलने वाली कहानियों को लाने के लिए सराहा है। एसोसिएशन ने कहा, हम हर साल ऐसे किसी व्यक्ति को सम्मानित करते हैं जिसके काम ने सार्वजनिक जीवन में साउथ एशियन पहचान को व्यक्त करने के तरीकों को आकार दिया हो। अभिनेता ईशान खट्टर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज होम बाउंड की सफलता का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच ईशान जल्द ही अपनी पहली कॉमेडी ड्रामा फिल्म जुगाड़ू में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि उनके करियर की पहली ऐसी फिल्म होगी जहां वो कॉमेडी करते दिखाई देंगे। जुगाड़ू के जरिए मशहूर पंजाबी अभिनेत्री तानिया बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म भारत भाग्य विधाता है। मेकर्स ने इसका पोस्टर जारी कर रिलीज डेट का खुलासा किया है। फिल्म भारत के उन हीरोज की कहानी बताएगी जो अनसुनी है। बता दें कि फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगी। भारत भाग्य विधाता फिल्म 12 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड फिल्म पति पत्नी और वो दो का नया गाना हमने वही लगाया दिल रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो 30 मई 2026 को रिलीज होगी। ये फिल्म भारतीय सुपर हीरो जॉनर में एक बिल्कुल नया और भावनात्मक रंग जोड़ती नजर आती है। फिल्म एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कल्पना, मासूमियत और रहस्य मिलकर एक अनोखा सिनेमाई अनुभव रचते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म सिस्टम को लेकर चर्चा में है। सिस्टम में कानून, न्याय और सत्ता के बीच चलने वाली खींचतान को दिखाई जाएगी। ये फिल्म एक ऐसी कहानी लेकर आ रही है जिसमें दो अलग अलग दुनिया की महिलाएं एक साथ आकर सच को सामने लाने की कोशिश करती हैं। फिल्म सिस्टम 22 जून 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। दिवंगत अभिनेता इरफान खान की 26 साल पुरानी अनरिलीज्ड फिल्म द लास्ट टेनेंट को आखिरकार दर्शकों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इस फिल्म में विद्या बालन भी मुख्य भूमिका में है। ये इन दोनों दिग्गजों के साथ में एकमात्र फिल्म है। फिल्म 29 अप्रैल को इरफान खान की पुण्यतिथि के अवसर पर द सॉल्ट इंक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज की गई है। फिल्म के रिलीज में 2.5 दशक से ज्यादा की देरी की वजह इसकी फुटेज का खो जाना था। हाल ही में निर्देशक को पुराने सामान में इसकी एक VHS कॉपी मिली। हालांकि वीडियो की गुणवत्ता थोड़ी कम है, लेकिन इरफान खान की यादों और उनके शुरुआती अभिनय को सहेजने के लिए मेकर्स ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करने का फैसला किया। टाइटल ट्रैक की इमोशनल फील और एतबार की दिल को छू लेने वाली गहराई के बाद अब चांद मेरा दिल के मेकर्स लेकर आए हैं खासियत। अनन्या पांडे और लक्ष्य पर फिल्माया गया ये गाना प्यार के खूबसूरत लम्हों को बड़े ही दिलकश अंदाज में दिखाता है।

0: रखी। बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही, बाय बाय।
1: श्रोताओं, बॉलीवुड की खबरें आपने सुनी और आपको याद है ना कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कभी भी जब आप अकेले होते हैं, किसी बात पर निराश हैं, कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई गाना आपके मन में आ जाता होगा, तो वो कौन सा होगा, उसके बारे में आप मुझे अवश्य लिखिएगा। और मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS South Asian. Play.

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। श्रोताओं, हमारे श्रोता असद जी सुनना चाहते थे एक गाना कयामत से कयामत तक का। अब वो गाना तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन मैंने सोचा कि उसी फिल्म का दूसरा गाना हम आपके लिए सुनवा रहे हैं। असद जी, उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपको पसंद आएगा।

और कल यानी शुक्रवार के कार्यक्रम में हमारे श्रोता पीयूष जी सुनना चाहते थे एक गाना, तो कल तो वो संभव नहीं था, परिवार का दिन जिसको हम कह रहे हैं कि ये पूरा सप्ताह परिवार के लिए समर्पित है, तो जब परिवार साथ हो तो कुछ इसी तरह की बातें तो होती ही है ना, तो सब पूरा परिवार मिलजुल के गाता है, तो बस यही वो गाना है जिसे पीयूष जी सुनना चाहते थे।

और श्रोताओं, इस बीच में हमारी श्रोता रमा भारद्वाज जी ने भी अपने उन गानों की बात की है जो वो सुनती हैं और जो उनको देते हैं एक अलग तरह की खुशी। गाना है जिंदगी का साथ निभाता चलूं, और दूसरा गाना वो सुन के खुश हो जाती हैं, मेरा नाम चिंचिंचू। गीता दत्त का गाना है ये, हावड़ा ब्रिज। और हमारे एक और श्रोता जी थे जो आलोक जी, उनको भी ये गाना पसंद था, मैं जिंदगी का साज। तो लग रहा है कि कुछ वो गाने हमेशा ही पसंद आते हैं जिसमें कहीं कुछ आशाजनक बात होती है। और हमारे श्रोता असद जी ने भी अपनी पसंद का गाना तो लिख भेजा है। असद जी, कोशिश करूँगी कि वो गाना आपके लिए ढूंढ सकूँ, और आज तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले शनिवार के कार्यक्रम में या अगले किसी और कार्यक्रम में, हमारा आप कार्यक्रम हमेशा सुनते ही हैं, तो किसी भी कार्यक्रम में उस गाने को शामिल कर लिया जाएगा। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहा कीजिए, और गाने हम आपकी पसंद के ही बजाते हैं, कोशिश रहती है हमारी। कुमार जी, आपकी भी पसंद नोट कर ली है, आते किसी प्रोग्राम में उसको हम अवश्य शामिल करेंगे। फिलहाल चलते हैं इस गाने की तरफ़।

श्रोताओं, उम्मीद कर रही हूँ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, गाने भी अच्छे लगे होंगे और आपकी पसंद भी मेरे पास तक पहुँच ही रही है। और ये भी जाना कि आप लोगों को कौन से गाने पसंद आते हैं, एक दौर का भी पता चला कि कौन से दौर के गाने हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। खैर, आते हुए कार्यक्रमों में इसी तरह के गाने हम बजाते ही रहेंगे और अभी आपको छोड़े जा रही हूँ एक गाने के साथ में। और ये वो गाना है जो हमारे श्रोता भीमा बाई जी अक्सर गुनगुनाते हैं। आप समझ गए हैं, फिल्म सिलसिला का ये गाना।

श्रोताओं, जैसा कि मैंने कहा कि आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ, और यहाँ पर ये बताती चलूँ कि हमारा कार्यक्रम हर दिन आता है 5 से 6 बजे तक। आप इस कार्यक्रम के साथ अवश्य जुड़ा कीजिए, बहुत सारी जानकारी भरा कार्यक्रम होता है। तो अभी अनीता बरार का नमस्कार।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से.
1: When all you want is a weekend full of hits,
2: here it is.
1: You're listening to SBS South Asian.

है पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

कांटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सरा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेत की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सक जमीन को फिर

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

मेरे अगे जो बनती सी वैसे तू तो नहीं सी। आ दिल तेरा इन्ना काला तू कदे कीता मैनू शो नहीं सी। चल ठीक है जिमें भी हाँ गल मुक्की चंगी है। आ तेरे अर्गी नालों तो यारी टुटी चंगी है, यारी टुटी चंगी है।

Desi Dance Party on SBS South Asian.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा।

0: Your news from here
1: and hits from home. SBS South Asian.
2: Yo, yo, Hani Singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो। पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या तब

समुद्र के पानी में बैठी मैंने अपना मुंह धो लिया ऐसे तू नाचे जैसे बाग में नाचे मोरनी नजर पहली में दिल ले गई तू दिलों की चोरनी

0: भी हाय।
1: पे करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
2: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी बातें

Get a tag.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

साला गर्दा उड़ा दिए। अरे गर्दा उड़ा दिए।